0: मैं फरहत नाज। अठारहवां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश शामिल होंगे। इसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें वैश्विक शासन व्यवस्था, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा से निपटने की क्षमता और जरूरी आपूर्ति श्रृंखला शामिल हैं। ब्रिक्स सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। इसका विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेता भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन शामिल होंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो वियेरा करेंगे, जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद भी इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इसके बाद सभी सदस्य देश सामूहिक रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र की मेजबानी में रात्रि भोज में वे शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। हवाई अड्डे पर कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने उनका स्वागत किया। वहीं बुरंडी के राष्ट्रपति एवेरेस्ते नादियने शिमिए अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के लिए महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नागरिकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। ये निर्णय बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 9वीं बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मध्यम लहरी 229 अंश मीटर अर्थात 1305 किलो हर्ट्सवर आणि FM 102 MHz वर आम्ही आकाशवाणी परभणी केंद्रावरून बोलत आहोत. श्रोते हो, 6:05 झालेत. नमस्कार परभणी या अंतर्गत विचारशलाका हा कार्यक्रम आम्ही आता प्रसारित करत आहोत. आज विश्वास याविषयी अंजली कुलकर्णी यांचे विचार जाणून घेऊयात.

CIDPI यानी पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर रेजोल्यूशन। सरकारी संस्थान, विभाग या मंत्रालय के किसी पदाधिकारी के खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार की जानकारी हो यदि आपके पास, तो सारी डिटेल्स के साथ अपना शिकायत पत्र सचिव केंद्रीय सतर्कता आयोग को बंद लिफाफे में भेजें। और हाँ, लिफाफे के ऊपर PIDPI लिखना ना भूलें। PIDPI के अंतर्गत की गई शिकायतों में विसल ब्लोअर की पहचान गुप्त रखी जाती है। अधिक जानकारी के लिए देखें www.cvc.gov.in। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। दो दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह वह मंच है जहां ये देश ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण तैयार करते हैं। वहीं निरंतर संवाद के माध्यम से ब्रिक्स बहुपक्षीय संस्थाओं के भीतर ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। इसमें विकास, स्थिरता और नवाचार को एजेंडे के केंद्र में रखा गया है। साथ ही यह ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी प्रमुखता देता है। भारत का देश ब्रिक्स को एक रचनात्मक, समाधान केंद्रित और परिणाम वाले मंच के रूप में और अधिक सशक्त बनाना है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार।

0: दिल्ली।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
2: रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल या हुनर वाले पेशेवरों को एक दूसरे के यहाँ काम करने का अवसर देना और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित कई क्षेत्रों में भारत रूस के बीच सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही संघर्षों को सुलझाने का सही तरीका है और भारत शांति के प्रयासों में सहायता के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। श्री मोदी ने भारत के इस रुख को लगातार दोहराया कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी की। दोनों नेताओं ने दुनिया भर में चल रहे टकरावों, आवागमन की आजादी, सतत विकास, अक्षय ऊर्जा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आसियान के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ते निदायशिमे अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी भारत पहुंच चुके हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री सिहासिक फुआंग केटकेओ भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति काशिम शेटिमा नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा और अनुपम की रिपोर्ट के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
4: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
4: आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। इसमें भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना।
1: भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा है कि ब्रिक्स सहयोग को ठोस व्यावसायिक परिणामों में बदलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
5: ब्रिक्स वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओनली ट्रेड।
6: ब्रिक्स का गठन व्यापार के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन अब इसका दायरा कई क्षेत्रों तक बढ़ गया है, जैसे वैश्विक राजनीति, आतंकवाद, कृषि और आवागमन से जुड़ी चुनौतियां। इसलिए 11 देशों का इसमें शामिल होना महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि इन देशों के बीच न सिर्फ व्यापार और सहयोग बढ़ना चाहिए, बल्कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, यह दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने वाला मंच बन सकता है।
5: वसुदेव कुटुंबकम।
1: सम्मेलन को देखते हुए आज सवेरे 9:30 बजे से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो कल सवेरे 6 बजे से सभी लाइनों पर अपनी सेवाएं शुरू करेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे

0: जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: Samachar Prabhat mein aapka phir swagat hai. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी।
4: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 तक देश भर में 24,96,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें हरियाणा राज्य करीब 5,75,000 पंजीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि बिहार में 3,46,000 से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। फरवरी 2026 तक इस योजना के कार्यान्वयन और इसकी पहुँच आने पर 540 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कराना है, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिवांग की रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: उत्तर प्रदेश में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अकेले गुरुवार को लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि अब तक लगभग 21,000 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय भी मुहैया कराया जा रहा है। बाढ़ के दौरान बीमारियों के फैलने के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय है। प्रभावित इलाकों में लगभग 1100 डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई हैं। उधर राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद किया गया है। यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में एक है। एशिया कप जूनियर महिला हॉकी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। चीन की मोकी में ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 9:45 पर खेला जाएगा। इससे पहले कल भारतीय पुरुष टीम ने मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में 7 बार की विजेता भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले बिजनेस फोरम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने सम्मेलन शीर्षक से लिखा है, ब्रिक्स व्यापारिक बाधाएं हटाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ब्रिक्स से बना ब्रिज, पुतिन से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शांति के प्रयासों में मदद के लिए तैयार। जनसत्ता के अनुसार समुद्र में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। दैनिक जागरण लिखता है, ब्रिक्स मंच पर साथ आए मोदी पुतिन फिजिशकियन। अमर उजाला की सुर्खी है, जीडीपी आंकड़ों पर आईएमएफ की मुहर, भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया। कहा आईआईपी और पीपीआई की नई श्रृंखला से बेहतर होगी आंकड़ों की गुणवत्ता। पत्र के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में 45 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बढ़त। ई कॉमर्स शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, ऑनलाइन खरीदारी में फर्जी डिस्काउंट पर लगा, एमआरपी बढ़ाकर बड़ा डिस्काउंट का खेल नहीं चलेगा, पिछले 30 दिन की सबसे कम कीमत बतानी होगी। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मलेशिया को हरा भारतीय हॉकी टीम फाइनल में, जूनियर एशिया कप में

0: लगातार चौथे और कुल छठे खिताब पर नजरें। लोकसत्ता के अनुसार महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, भारतवंशी वसुधा ने अमरीकी गणितज्ञ जोआन को 92 वर्ष की उम्र में दोबारा गणित से जोड़ा। मैथ से दूरी बना चुकी थी जोआन, लेकिन छात्रा वसुधा की जिद ने भर दी ऊर्जा। गुरु शिष्या के जुगलबंदी ने सुलझाई 100 साल पुरानी गणित की थ्योरी। जनसत्ता ने दिया है भारत नवोन्मेष प्रदर्शनी में 37 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचार प्रदर्शित। शिक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के समन्वय से किया आयोजन, नवाचारों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना है उद्देश्य। हिंदुस्तान ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, पश्चिमी विक्षोभ तय करेगा सर्दियों में प्रदूषण। पत्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का सीधा संबंध शरद ऋतु के दौरान समुद्र के तापमान से होता है। इसके आधार पर प्रदूषण की गंभीरता का अनुमान एक मौसम पहले ही लगाया जा सकता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। 2 दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. 18th BRICS summit to begin in New Delhi today. Discussions to focus on global governance, trade, security and supply chains as world leaders assemble for 2-day summit. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with Chinese President Xi Jinping and other BRICS leaders today on the sidelines of summit. Prime Minister Modi pushes for secure sea lanes, open supply routes and removal of trade barriers at BRICS Business Forum to sustain global trade. Saudi Arabia shuts vital pipeline after attack. Houthi rebels in Yemen seize strategic islands, tightening grip on key Red Sea shipping route. Uttar Pradesh government steps up relief and rescue operations as flood affect 25 districts. And in hockey, Indian women's team to clash with South Korea in semi-final of Junior Asia Cup in China this morning. And now the news in detail. The 18th BRICS summit is set to begin at Bharat Mandapam in New Delhi today. The 2-day grand event will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. During the high-level event, leaders of the BRICS member countries are expected to discuss key issues including global governance, multilateralism, trade and investment, technology, food and energy, security, healthcare, disaster resilience and critical supply chains. The summit is being held under India's 2026 BRICS chairship with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Several key world leaders will participate in the high-profile summit. Prime Minister Narendra Modi will be joined by Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, and Iranian President Masoud Pezeshkian. The summit will begin with a closed session for BRICS member countries on inclusive global governance and strengthening multilateralism. Leaders of the BRICS member countries will also visit the Bharat Innovates exhibition at Bharat Mandapam. This will be followed by a joint tree planting ceremony and a gala dinner hosted by Prime Minister Modi. The Prime Minister is scheduled to hold a series of bilateral talks with BRICS leaders on the sidelines of the summit today. These include meetings with Chinese President Xi Jinping, Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim and Vietnamese Prime Minister

0: ये आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर है। शेख तौफीक से इलाकाई खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। ब्रिक्स ममालिक आलमी इख्तराक के बड़े मरकज के तौर पर उभर रहे हैं, वज़ीर आज़म का बयान। 18वीं ब्रिक्स सरबराही कॉन्फ्रेंस आज से शुरू। सारिफिन के मफादात को नज़रअंदाज किए बगैर टेक्नोलॉजी को अपनाएं, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के इख्तितामी इजलास में मरकजी वज़ीर ख़जाना की अपील। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने मुख्तलिफ मुतालबात के लिए हड़ताल और शदीद एहतजाज का दिया इंतबाह। नागपुर रायपुर कौमी शाहरा पर एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत और कुनबी ज़ात के सर्टिफिकेट के लिए खसूसी कैंपों को अवाम का पुरजोश रद्दमल। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स ममालिक आलमी इख्तराअत और हल के लिए बड़े मरकज के तौर पर उभर रहे हैं। वो कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स बिजनेस फोरम के लीडरशिप सेशन से खिताब कर रहे थे। मोदी ने कहा कि ब्रिक्स ममालिक, जो इस वक्त दुनिया की आबादी का 50% हैं, आलमी GDP का 40% और आलमी तिजारत में 25% से ज़्यादा हैं। जहां आलमी GDP में तकरीबन 2.5 गुना इजाफा हुआ है, वहीं ब्रिक्स ममालिक की मुश्तरका GDP में तकरीबन 4.5 गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा,
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% GDP और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इन वर्षों में जहां ग्लोबल GDP करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड GDP करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है।
0: दरियसना 18वीं ब्रिक्स सरबराही कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हो रही है। भारत मंडपम में मुनक़िद होने वाली इस 2 रोज़ा छोटी कॉन्फ्रेंस में 11 बड़ी तरक्की पजीर और उभरती हुई मईशतें इकट्ठी होंगी। इस छोटी कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मौजूदात पर मुस्बत और नतीजा खैज बातचीत होगी। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि इस छोटी कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद आलमी बहबूद है। मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने सिक्योरिटी और सारिफिन के मफादात को नज़रअंदाज किए बगैर नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की अपील की है। वो कल मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के इख्तितामी सेशन से खिताब कर रही थी। चूंकि AI यानी मसनूई ज़ियानत एक दोधारी तलवार है, इसलिए सीतारमन ने तकनीकी तरक्की को रफ्तार कम न करते हुए हिफाजत का ख्याल रखने की अपील की है। बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 2026 यकूम अक्टूबर से नाफिजुल अमल होगा। सदर जमहूरिया ने 13 अगस्त को इस एक्ट को अपनी मंजूरी दे दी थी। ये नया एक्ट 1891 के बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट की जगह लेगा। इस एक्ट के तहत बैंक रिकॉर्ड का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड बतौर सबूत काबिल कबूल होगा और कानूनी तौर पर नाफिज किया जाएगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की जानिब से मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर बैंक मुलाजिमीन ने कल एहतजाज किया। छत्रपति संभाजीनगर में कई मुलाजिमीन ने हड़ताल में हिस्सा लिया। कल नांदेड़ ज़िले के मुख्तलिफ बैंकों के 400 से ज़ायद अफसरान और मुलाजिमीन ने भी शिरकत की। बीड़ ज़िले की हड़ताल में बीड़ ज़िले के तमाम ताल्लुकों से पब्लिक सेक्टर बैंकों के 200 से ज़्यादा अफसरान और मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। तंजीमों ने मुतालबा तस्लीम न होने की सूरत में 28 से 30 सितंबर तक 3 रोज़ा हड़ताल और 26 अक्टूबर से गैर मुअय्यना हड़ताल का इंतबाह दिया है। नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि आइंदा आलमी मराठी अदबी कॉन्फ्रेंस लंदन में मुनाकिद की

जाएगी। महाराष्ट्र बोर्ड ने शिंदे को लंदन में ग्लोबल प्राइड ऑफ महाराष्ट्र अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर शिंदे मुखातिब थे। नायब वज़ीर आला को महाराष्ट्र की समाजी और इकतसादी तरक्की में उनके तआवुन के लिए एजाज से नवाजा गया। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में मुबैना पेपर लीक होने और दीगर मुतालबात के खिलाफ कल छत्रपति संभाजीनगर में स्टूडेंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक एहतजाजी मार्च निकाला गया। इम्तिहान में शफाफियत लाने, पेपर लीक के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, तलबा के मुतालबात को नज़रअंदाज न करने जैसे मुतालबात इस मौके पर किए गए। नागपुर रायपुर कौमी शाहरा पर कल एक सड़क हादसे में 9 अफराद की मौत हो गई जबकि 9 दीगर जख्मी हो गए। भंडारा ज़िले के पिंपलगांव रोड इलाके में कल सुबह एक पिकअप वैन और ट्रक में तसादुम हुआ। हादसे में मुलविस तमाम मुसाफिर मजहबी तकरीब के लिए छत्तीसगढ़ से नागपुर आ रहे थे। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर से नशर की जा रही हैं। मराठा रिजर्वेशन तहरीक के लीडर मनोज जरांगे ने आज अंतरवाली सराठी में मराठा बरादरी के अराकीन की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग के बाद तहरीक की मुस्तकबिल की सिमत और मुंबई मार्च के बारे में फैसला किए जाने का इम्कान है। मराठा बरादरी के लोग अंतरवाली आने लगे हैं। तलबा तहरीक के रहनुमा और कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दिपके ने कल एहतजाज के मकाम पर जरांगे से मुलाकात की और उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। दरियासना जरांगे के अनशन की हिमायत में कुम्हार पिंपलगांव के लोगों ने कल घनसाऊंगी अंबर रोड पर सड़क ब्लॉक कर दी। कल लातूर ज़िले के निलंगा तालुके के निटूर में मराठा बरादरी ने लातूर जहीराबाद हाईवे पर टायर जलाकर एहतजाज किया जिसकी वजह से इस शाहरा पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक रोक दी गई। लातूर बाढ़शी शाहरा के साखरा पार्टी पर भी सड़क ब्लॉक कर दी गई। कुनबी कुनबी मराठा मराठा कुनबी जात के सर्टिफिकेट की तकसीम के लिए छत्रपति संभाजीनगर में मुनाकिद किए गए 28 खसूसी कैंपों में कुल 389 दरख्वास्तें मौसूल हुईं। जालना ज़िले में अब तक मंडल सतह पर मुनाकिदा 12 खसूसी कैंपों में 126 दरख्वास्तें, बीड ज़िले के 18 कैंपों से 98 दरख्वास्तें और लातूर ज़िले के 21 खसूसी कैंपों से 142 दरख्वास्तें मौसूल हुईं। ज़िला कलेक्टर ने बताया कि इन तमाम मामलात का फैसला तालुका सतह की नसबनामा कमेटी की मीटिंग में किया जाएगा जिसके बाद फौरी तौर पर मजीद कार्रवाई की जाएगी और दरख्वास्तों को हल किया जाएगा। नांदेड़ ज़िले के हर महसूल मंडल की सतह पर 10 सितंबर से 17 सितंबर तक खसूसी कैंप का इनेकाद किया गया है ताकि कुनबी कुनबी मराठा मराठा कुनबी जात के सर्टिफिकेट हासिल करने के अमल को आसान बनाया जा सके। नांदेड़ ज़िला इंतजामिया ने शहरियों से इन कैंपों से इस्तेफादा करने की अपील की है। बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ज़िले यूथ फेस्टिवल का अफ्तताह कल दीगर पसमानदा तबकात और बहुजन बहबूद के वज़ीर अतुल सावे ने किया। इस ज़िलाई यूथ फेस्टिवल में 1518 नौजवान फनकारों ने शिरकत की। अंबाजोगई में यशवंतराव चौहान मेमोरियल कमेटी के भगवान राव जी लोमटे मेमोरियल एवं रियासती अवार्ड का ऐलान इस साल बुजुर्ग शायर प्रिंसिपल डॉक्टर विठल वाघ को किया गया है। ये इत्तला कमेटी के सेक्रेटरी दगड़ू लोमटे ने दी। ये अवार्ड सर्टिफिकेट और 25,000 रुपये पर मुश्तमिल है। ये अवार्ड 20 सितंबर को अंबाजोगई में रस्मी तौर पर पेश किया जाएगा। छत्रपति संभाजीनगर ज़िले में किसानों की कर्ज माफ़ी स्कीम की तीसरी फहरिस्त का ऐलान कल अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति स्कीम के तहत किया गया। इस स्कीम के तहत तमाम बैंकों ने ज़िले के 109,701 किसानों के बारे में मालूमात वेबसाइट पर दस्तयाब कराई है। ज़िले के 1,105 देहातों के कुल 19,243 किसान इस तीसरी फहरिस्त में शामिल हैं। रियासत में बारिश की कमी की वजह से पैदा होने वाली संगीन सूरतहाल का नोटिस लेते हुए वज़ीर आला ने 180 तालुका जात में खुश्क साली जैसी सूरतहाल का ऐलान किया है। इसलिए तआवुन के वज़ीर बाबा साहब पाटिल ने किसानों से इंतहाई कदम ना उठाने की अपील की है। वो कल लातूर ज़िले के अहमदपुर में लांजी इलाके का मुआयना करने के बाद मुखातिब थे। उन्होंने यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत मजबूती से किसानों के साथ खड़ी है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी की जानिब से नांदेड़ में जेर इल्तवा मनसूबों को लेकर कल नांदेड़ में एहतजाज किया गया। रुकने पार्लियामान संजय राउत और रुकने असेंबली अंबादा दानवे ने एहतजाज की क़यादत की। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर को मुख्तलिफ मुतालबात पर मुश्तमिल मेमोरेंडम भी पेश किया गया। मेरा रेशम मेरा अभिमाना सा दूसरा टप्पा का दूसरा मरहला परभनी ज़िले में रूबा अमल लाया जा रहा है।
اس کے تحت ضلع کے ٹاکلی، کمبھکرن، شیوڑی اور

0: इस भजन के साथ ही सुबह का ही प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: और सरबजीत, अब हम अपने श्रोताओं को आज की तारीख याद दिला दें, क्योंकि अगला जो सेगमेंट हमारा वो हम उसमें इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। आज है 12 सितंबर 2026 और आज वीरता, विज्ञान और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के लिए आज का दिन जाना जाता है।
2: एब्सोल्युटली। सो व्हाट इज द फर्स्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू आर गोइंग टू शेयर विद अस फरहत?
1: जी सरबजीत, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 1897 की सारागढ़ी का युद्ध यहां हुआ था। 12 सितंबर 1897 को ब्रिटिश भारतीय सेना के किस सिख सैनिकों ने सारागढ़ी की चौकी पर हजारों अफरीदी और ओरकजई आदिवासी लड़ाकों के खिलाफ अद्भुत वीरता से मुकाबला किया। हवलदार ईश्वर सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने अंतिम सांस तक मोर्चा संभाला। ये युद्ध सैन्य इतिहास में असाधारण वीरता और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। वही 1944 की अगर बात की जाए तो जर्मनी में आज ही के दिन दाखिल हुई थी अमरीकी सेना। जी हां, दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद से जर्मनी यूरोप में अमरीका की रक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। युद्ध खत्म होने के बाद जर्मनी पर 10 साल तक मित्र देशों का कब्जा रहा, अमरीकी सेना उसका ही हिस्सा थी। हालांकि सेना की संख्या धीरे धीरे कम होती गई। 1966 में भारतीय तैराक मिहिर सेन ने डॉर्डेनल्स जलडमरू मध्य को तैर कर पार किया। वहीं 1991 में अंतरिक्ष शटल STS-48 अंतरिक्ष में छोड़ा गया। और बात कर लेते हैं अब सन 2012 की, तो आज ही के दिन एप्पल ने आईफोन 5

0: फॉर iOS 6 लॉन्च किया था। बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे, साहित्यकारों की बात करेंगे, स्वतंत्रता सेनानियों की बात करेंगे और एक महत्वपूर्ण जोड़ी की बात करेंगे, लेकिन हम उनका नाम अभी नहीं बता रहे, अंत में बताएंगे।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल। और हम बात कर रहे हैं मातृभाषा की, तो एक और तमिल एक्टर की बात कर लेते हैं। अभिनेता रहे ये, गायक रहे, पत्रकार रहे, लेखक रहे, रंजन की। इन्होंने तमिल फिल्म अशोक कुमार से फिल्मी दुनिया में शुरुआत करी और लेकिन उन्हें पहचान SS वासन की फिल्म चंद्रलेखा से मिली। रंजन ने तमिल फिल्मों के साथ ही हिन्दी फिल्मों में भी काम किया। वो हरफनमौला व्यक्ति थे। उनकी फिल्म चंद्रलेखा अपने दौर की सबसे महंगी फिल्मों में शुमार थी। उत्तर भारत में प्रदर्शित होने वाली दक्षिण भारत की ये पहली फिल्म थी जिसे दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रियाएं मिली। तमिल के बाद इन्होंने हिंदी संस्करण को लेकर रंजन बॉलीवुड में आए और बहुत सारी फिल्में इनकी लोकप्रिय रही, मंगला, सपेरा, मदारी। तो एक काम करते हैं, हम अपने श्रोताओं को उन्हीं की एक फिल्म से ये प्यारा संगीत सुनवा देते हैं। और आज हमें नोबेल पुरस्कार विजेता अमरीकी कृषि विज्ञानी नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ने भी अलविदा कहा, जिन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है। और अब हम बात कर रहे हैं ऐसी जोड़ी की जिसके बारे में हमने आपको बताया था, सरबजीत शंकर जयकिशन। हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो पूरे दौर की आवाज बन जाते हैं और जयकिशन का नाम ऐसा ही था। 12 सितंबर 1971 को महज 41 साल की उम्र में दुनिया छोड़ने वाले जयकिशन आज भी अपने संगीत के जरिए लोगों के बीच मौजूद हैं।
1: एंड इन फैक्ट फरत, एज यू राइटली सेड, यू नो सम म्यूजिक पीसेज आर टाइमलेस एंड आई बिलीव दैट्स द रियल टेस्ट ऑफ ग्रेट म्यूजिक। And if we were to talk about Jaikishan, the answer is a big yes. You know, his music is timeless. And if we listen to his music even today, we can way back relate to the era when this music was actually composed.
0: बिल्कुल। और हारमोनियम बजाने का उनको बेहद शौक था और उन्हीं की इस प्रतिभा को पहचाना राज कपूर ने। और पहले दोनों ने फिल्म आग में संगीतकार राम गांगुली के सहायक के रूप में काम किया और फिर 1949 में आई बरसात ने शंकर जयकिशन की किस्मत बदल दी।

0: So romance, longing, happiness, heartbreak, Jai Kishan could make you feel all of it through a tune.
1: बिल्कुल, बरसात के संगीत की सफलता के बाद शंकर जयकिशन हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े नामों में शामिल होने लगे. फिल्म आवारा के गीतों से ये जोड़ी और चमक उठी.

सर पे। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म 420 से ये मेरा जूता है जापानी, वो भी काफी लोकप्रिय हुआ था। अब आइए सुन लेते हैं ये गीत जो लिखा था हसरत जयपुरी ने, जिंदगी एक सफर है सुहाना।

कर दिया है। और हॉकी में चीन में जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में भारतीय खवातीन की टीम जनूबी कोरिया के साथ खेलेगी। और अब खबरें तफसील से। 18वीं ब्रिक्स सरबरा कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रही है। इस दो रोजा अजीम शान तकरीब में 11 उभरती और तरक्की करती हुई मईशतें यकजा होंगी, जिनमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। आला सतह की इस तकरीब के दौरान उम्मीद है कि ब्रिक्स रुकन मुल्कों के रहनुमा अहम मामलों पर बातचीत करेंगे, जिनमें आलमी हुक्मरानी, कसीर मुल्की निजाम, तिजारत और सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी, हिफ्जान सेहत, कुदरती आफात की सूरत में इस्तेहकाम और अहम सप्लाई चेन शामिल है। यह समिट भारत की 2026 की सदर नशीनी के तहत मुनाकिद की जा रही है, जिसका मौजू है मजबूती, इख्तिरा, तावुन और पायदार तरक्की का क्याम। इस मशहूर मारूफ समिट में दुनिया के बहुत से अहम रहनुमा शिरकत करेंगे, जिनमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन, चीन के सदर शी जिनपिंग, जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा, मिस्र के सदर अब्दुल फत्ता सीसी, इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो और ईरान के सदर मसूद पिजिश्कियान शामिल हैं। ये सरबरा कॉन्फ्रेंस ब्रिक्स रुकन मुल्कों के बंद कमरे में एक जलसे के साथ शुरू होगी, जिसका मौजू है सबकी शमूलियत वाली आलमी हुक्मरानी और कसीर मुल्की निजाम को मुस्तहकम बनाना। ब्रिक्स रुकन मुल्कों के रहनुमा भारत मंडपम में भारतीय इख्तिराकारों की एक नुमाइश भी देखेंगे। इसके बाद एक मुश्तरका शजरकारी की तकरीब मुनाकिद होगी और फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक शानदार इशाइये का एहतमाम करेंगे। वजीर आजम आज समिट से अलग ब्रिक्स रहनुमाओं के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। इनमें चीन के सदर शी जिनपिंग, अबूजबी के वलिया शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल-नहयान, इथोपिया के वजीर आजम अबी अहमद अली, मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम और वियतनाम के वजीर आजम ली मिन हंग शामिल हैं। वजीर आजम ने आलमी तिजारत की पायदारी के लिए महफूज समुद्री रास्तों, खुली सप्लाई वाले रास्तों और जहाजों की हिफाजत पर जोर दिया है। उन्होंने ब्रिक्स मुल्कों पर जोर दिया है कि वह तिजारती रूकावटों को दूर करने और तिजारत के लिए मौकों में इजाफा करने की जानिब काम करें। जनाब मोदी ने यह बात कल शाम नई दिल्ली में भारत मंडपम में ब्रिक्स तिजारती फोरम के रहनुमाओं के एक जलसे से खिताब करते हुए कही। वजीर आजम ने कहा कि भारत जहाजरानी की आजादी और जहाजियों की हिफाजत की पुरजोर वकालत करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आलमी तिजारत में बिला रुकावट आमदरफ्त के लिए महफूज समुद्री रास्ते लाजमी हैं। वजीर आजम ने कहा कि तिजारत में आलमी सतह पर बढ़ती हुई रुकावटों के दौरान भारत इक्तसादी पुल तामीर करना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत आज तरक्की और इस्तेहकाम के लिए एतमाद के एक वसीले की पेशकश करता है। उन्होंने कहा कि भारत ने 2014 से अब तक तकरीबन 40 मुल्कों के साथ आजाद तिजारती मुआहदे किए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स में भी उसका यह नजरिया यही है कि तिजारत के लिए रुकावटों को दूर और मौके में इजाफा किया जाए। ये आकाशवाणी है। हुकूमत ने प्रधान

0: इंटरेस्ट।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप शबाना बेगम से खबरें सुनिए। 18वीं ब्रिक्स सरबरा कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। आलमी रहनुमा इस दो रोजा तकरीब में अपने मुजाकरात में आलमी हुक्मरानी, तिजारत, सलामती और सप्लाई चेन पर तवज्जो मरकूज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सरबरा कॉन्फ्रेंस से अलग चीन के सदर शी जिनपिंग और ब्रिक्स के दीगर रहनुमाओं के साथ बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स तिजारती फोरम में महफूज समुद्री रास्तों, सप्लाई के खुले रास्तों और तिजारती रुकावटों को दूर करने की अहमियत पर जोर दिया है ताकि आलमी तिजारत में पायदारी लाई जा सके। सऊदी अरब ने हमले के बाद अहम पाइपलाइन बंद कर दी है। यमन में हूसी बागियों ने अहम जजीरों पर कब्जा कर लिया है जिसकी वजह से बहर अहमर के जहाजरानी के रास्ते पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सैलाब से मुतासर 25 जिलों में राहत और बचाव का काम तेज

कहा कि ब्रिक्स में भी उसका यह नजरिया यही है कि तिजारत के लिए रुकावटों को दूर और मौके में इजाफा किया जाए। ये आकाशवाणी है। हुकूमत ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के तहत 10,77,000 मकानात को मंजूरी दी है ताकि स्कीम के निफाज और शहरी इलाकों में सबके लिए मकान के मकसद की जानिब आगे बढ़ने को मजीद रफ्तार दी जा सके। जुमेरात को नई दिल्ली में मुनक़िद हुई मंजूरी और निगरानी से मुतालिक मरकजी कमेटी की नवी मीटिंग में यह फैसला किया गया। मीटिंग की सदारत मकानात और शहरी उमूर की वजारत के शहरी तरक्की के महकमे के सेक्रेटरी जनाब सतेंद्र सिंह ने की। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY के आज 7 बरस मुकम्मल हो गए। छोटे और पसमानदा किसानों की गुजर बसर को यकीनी बनाने के मकसद से यह स्कीम 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। स्कीम के तहत जिन छोटे व पसमानदा अहल किसानों के पास जमीनें हैं उनके लिए 60 बरस की उम्र के बाद से 3,000 रूपये महाना पेंशन का बंदोबस्त है। पेंशन स्कीम का मकसद यह है कि मोमर किसान माली इस्तेहकाम के साथ बावकार जिंदगी गुजार सकें। गुज़िश्ता 7 बरस में PMKMY छोटे और मामूली किसानों के लिए एक अहम समाजी तहफ्फुज़ के कदम के तौर पर उभरी है ताकि वो बेहतर माली एतमाद के साथ अपने मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर सकें। सऊदी अरब ने कहा है कि उस पर जो जॉर्डन की तरफ से हमले किए गए उसके एक दिन बाद उसने मुल्क के पार एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब की तवानाई की वजारत ने एक बयान में कहा कि पाइपलाइन को बंद करने का यह फैसला एक एहतियाती कदम के तौर पर किया गया है। मशरिकी मगरबी पाइपलाइन का आबनाए हुरमुज में अमरीका और इसराइल के साथ ईरान की जंग के सबब रुकावट आ जाने के बाद तेल की दरामद जारी रखने की सऊदी अरब की सलाहियत में एक अहम रोल अदा किया है। उत्तर प्रदेश में सैलाब की बिगड़ती हुई सूरत हाल के दौरान रियासती हुकूमत ने सैलाब से मुतासिर कुनबों की मदद के लिए राहत और बचाव कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। शदीद बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद कम से कम 25 जिले सैलाब से मुतासिर हुए हैं। रियासती रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के मुताबिक जुमेरात के दिन ही तकरीबन 8,000 लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया। इसके साथ ही बहिफाजत निकाले गए लोगों की तादाद तकरीबन 21,000 हो गई है। मुतासरीन को महफूज जगह फराहम की जा रही है। इस वक्त तकरीबन 3,000 अफराद राहत कैंपों में रह रहे हैं। उधर ओडिशा में आज रियासत के जनूबी हिस्से में मुख्तलिफ मकामात पर शदीद से इंतहाई बारिश का इम्कान है। भारतीय महकमा मौसमियात ने नवरंगपुर, कोरापुट और मलकानगिरी अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रियासत के दीगर हिस्सों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। नौपाड़ा, बालंगीर और कालाहांडी में भी तेज बारिश की पेशगोई की गई है। रायगढ़, गजपति, गंजाम, कंधमाल और मलकानगिरी जैसे अजला में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का इम्कान है। IMT ने लोगों, बिलखसूस हसास और नशेबी इलाकों में रहने वालों को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। ओडिशा के साहिली इलाकों में खराब मौसमियाती सूरत हाल के पेश नजर माहीगीरों को भी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज आंध्र प्रदेश के लिए गरज चमक और तेज आंधी के साथ शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी दिन के दौरान तेज बारिश का इम्कान है। ओडिशा, तेलंगाना, मगरबी बंगाल और शिमाली मशरकी रियासतों के मुख्तलिफ हिस्सों में भी इसी तरह के मौसमी हालात रहेंगे। हॉकी में चीन के मौखी शहर में जूनियर एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में आज सुबह भारतीय खवातीन की टीम जनूबी कोरिया के साथ खेल रही है। दिफाई चैंपियन भारत क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को 19-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंचा है। भारत ने पूल ए के तहत जबरदस्त रिकॉर्ड कायम किया है। उसने 3 जबरदस्त कामयाबियों से 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं और एक मैच पूरी जद्दोजहद से बराबरी पर खत्म किया है। एक और सेमीफाइनल में मेजबान चीन मौखी शहर में दूसरे सेमीफाइनल में जापान के साथ खेलेगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे शुरू होगा। चीन ने क्वार्टर फाइनल्स में कजाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त दी थी जबकि जापान ने बांग्लादेश को 2-0 से हराया था। कल भारतीय मर्दों की टीम ने जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बनाई थी। उसने पहले सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराया था। खवातीन के क्रिकेट में T20 एशिया कप में कल दुबई में खेले जाने वाले खिताबी मुकाबले में भारत का सामना श्रीलंका से होगा। गुज़िश्ता रात श्रीलंका ने पाकिस्तान को 4 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई है।
131 रन के निशाने का पीछा करते हुए

0: श्रीलंका ने 18 ओवर्स और चार गेंदों में 6 विकेट पर 134 रन बनाकर जीत दर्ज की। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। 18वें ब्रिक्स सरबरा कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। आलमी रहनुमा इस दो रोजा तकरीब में अपने मुजाकरात में आलमी हुक्मरानी, तिजारत, सलामती और सप्लाई चेन पर तवज्जो मरकूज करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सरबरा कॉन्फ्रेंस से अलग चीन के सदर शी जिनपिंग और ब्रिक्स के दीगर रहनुमाओं के साथ बातचीत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स तिजारती फोरम में महफूज समुद्री रास्तों, सप्लाई के खुले रास्तों और तिजारती रूकावटों को दूर करने की अहमियत पर जोर दिया है ताकि आलमी तिजारत में पायदारी लाई जा सके। सऊदी अरब ने हमले के बाद अहम पाइपलाइन बंद कर दी है। यमन में हूसी बागियों ने अहम जजीरों पर कब्जा कर लिया है जिसकी वजह से बहर अहमर के जहाजरानी के रास्ते पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई है। और इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मध्यम लहरी 1305 किलोहर्ट्स वर आम्ही आकाशवाणी परभणी केंद्रावरून बोलत आहोत। सकाळचे ठीक 10 वाजलेत। प्रसारित करत आहोत मिश्र संगीत हा कार्यक्रम। तत्पूर्वी ऐकूयात
2: परभणीकरांसाठी आनंदाची बातमी। आता सोन्याच्या विश्वासाला लाभणार आहे नवा भव्य आणि शानदार पत्ता पूना गाडगे आणि सन्स। परभणीतील नवीन आणि भव्य शोरूम आता शिवाजी पुतळ्याजवळ। अधिक मोठी जागा, अधिक नवी डिझाईन्स आणि पिढ्यान पिढ्यांचा विश्वास। पूना गाडगे आणि सन्स 1832 पासून।
1: श्रोते हो, मिश्र संगीत या कार्यक्रमात सुरुवातीला वैशाली सामंत यांच्या आवाजातील ही गीतरचना ऐकूयात। या रचनेला संगीत आहे अभिजित राणे यांचं।

0: वनिता मंडळ हा कार्यक्रम श्रोतेहो प्रसारित करण्यात आला आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून. आमचं हे प्रसारण आपण प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन एआयआर या मोबाईल ऍपवर देखील ऐकू शकता. दुपारचा 1 वाजता ठीक 1 वाजता दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणाऱ्या हिंदीतील बातम्या आम्ही सहक्षेपित करू आणि 1:05 श्रोतेहो आपण ऐकू शकाल मराठी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम गीत बहार. सुरुवातीला हिंदीतील बातम्या दिल्ली केंद्रावरून.
1: आकाशवाणी पुणे
2: नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा. अठारहवा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज दोपहर नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा. 2 दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं. 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं. और अब अधिक जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम, जहां पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है. मौजूद है हमारे संवाददाता अंकित. अंकित, प्रधानमंत्री ने अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है इस शिखर सम्मेलन से अलग, और अभी और किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता का आज कार्यक्रम है?
3: हाँ जागृति, आज का दिन राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब से करीब 1.5 घंटे बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है. और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह से ही ब्रिक्स के सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं. सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की. उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद

0: अल-नाहयान और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इथियोपिया और मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर रुचि जताई है। इसके अलावा इथियोपिया ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूद अवसरों पर चर्चा हुई। जागृति आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक अहम द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति जिनपिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की पहली यात्रा है। जी जागृति
1: जी, धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। और इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम गेब्रेसियस भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से क्वांगचो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। ये सेवा ऐसे समय फिर शुरू हो रही है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन ऐसे समय में बंद की गई है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। दूसरे सेमीफाइनल में चीन का सामना जापान से होगा। फाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश होने की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कराईकल, विदर्भ, बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली की चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस 558 किलोहर्ट्स वर श्रोते हो अपने एक तहत आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी। आमचे हे कार्यक्रम आपण प्रसार भारतीच्या वेव्स ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲप वर देखील ऐकू शकता। दुपारचे 1:05:16 झालेले आहेत। आता प्रसारित करीत आहोत गीत बहार हा मराठी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम। कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूया जत्रा या चित्रपटासाठी अजय गोगावले आणि सहकारी यांच्या स्वरातील हे गीत आहे आनंद शिंदे यांचं। संगीतबद्ध केलंय प्रियदर्शन जाधव यांचं हे गीत आहे। अजय अतुल यांनी संगीतबद्ध केलेलं

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत की अध्यक्षता में दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबू धाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। और अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अब से कुछ ही देर में नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। दो दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर

0: चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। और अब अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित से। जी अंकित।
1: जी जागृति, देखिए।
0: हेलो अंकित, अभी आप शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर मौजूद हैं और ये बताइए कि इस समय कार्यक्रम स्थल का माहौल कैसा है और इस सम्मेलन के बारे में आपके पास क्या कुछ अन्य जानकारियां हैं।
1: जी जागृति, देखिए इस समय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आज का सत्र है अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है।
0: जी,
1: विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष सम्मेलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद 11 सदस्य देशों के नेता क्लोज डोर सेशन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे। ये नेता इसके बाद भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे संयुक्त रूप से पौधारोपण करेंगे और फैमिली फोटो के लिए भी एकत्रित होंगे। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले ब्रिक्स नेताओं के लिए सम्मान में भव्य रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। ये देखिए, भारत की अध्यक्षता में यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस समय आर्थिक बिखराव, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव इन चुनौतियों को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसे सहयोग की जरूरत है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न देशों की परिस्थितियों के अनुरूप हो। देखिए, ब्रिक्स इन चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसकी वजह ये भी है कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा वैश्विक GDP में इन देशों की हिस्सेदारी करीब 40% और वैश्विक व्यापार में करीब 25% हिस्सेदारी है। जी जागृति।
0: जी धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए शी जिनफिंग आज नई दिल्ली पहुंचे हैं और अब अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे संवाददाता आनंद से। जी आनंद, प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से अलग अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं और अगर आज की बात करें तो किन देशों के साथ अभी द्विपक्षीय वार्ता होने का कार्यक्रम है?
2: जी जागृति, आज का दिन भारत के लिए द्विपक्षीय और राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है।
0: जी,
2: आज सुबह से ही ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

0: ग्वांगशो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। ये सेवा चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के भारत दौरे के बीच शुरू हो रही है। इस साल मार्च में भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो ने भी शंघाई और कोलकाता के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की थी, जिससे दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क और मजबूत हुआ है। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुंचाना है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रदर्शनी में आए सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करना देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की नवाचार व्यवस्था तेजी से विकसित हुई है।
2: भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हुआ है। भारत इनोवेटिव्स की यात्रा ने नीस में आयोजित अपने पहले वैश्विक प्रदर्शन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव स्थापित किया है। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के साथ हम अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रयोगशाला से बाजार तक और भारत से विश्व।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम ₹3,000 की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन बंद कर दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। इस तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू बध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। पंजाब पुलिस के गैंगस्टर रोधी कार्यबल AGTF और देश छोड़कर भागे लोगों की निगरानी और प्रत्यर्पण की शाखा OFTEC ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से फरार अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दलम को मोल्दोवा गणराज्य से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की है। गैंगस्टर रोधी कार्यबल के पुलिस अधीक्षक बिक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की 4 सदस्यीय टीम आज सुबह उसे भारत लेकर आई। बिहार में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हालांकि कई इलाके अब भी प्रभावित हैं। राज्य के 14 जिलों के 2000 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है।
3: प्रदेश में गंगा, सोन, बागमती, घाघरा और पुनपुन समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है। हालांकि गंगा और पुनपुन कई स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर पटना के गांधी घाट समेत राज्य के लगभग सभी स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर से अधिक ऊपर बह रही है। जलस्तर में कमी के साथ गंगा, गंडक, कोसी और सोन के तटवर्ती इलाकों में कटाव का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग ने संवेदनशील तटबंधों और कटाव संभावित स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश श्री।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कराईकल, विदर्भ, बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी

0: तूफान की आशंका है। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन पपैया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि प्रोफेसर पपैया की वाक्पटुता और विद्वता ने देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं सेवा, त्याग, समानता, करुणा और मानवता की भावना को बढ़ावा देती हैं और समाज को मानव कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इससे पहले पुरुषों के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने कल पहले सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमेरिका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आर्याना सबालेंका आज रात फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना का सामना करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबुधाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: पाचशे 58 किलोहर्ट्स वर श्रोते हो आपण ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी। प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन एआयआर या मोबाईल ॲपवर देखील आमचे कार्यक्रम आपण ऐकू शकता। दुपारचे 2:30 वाजलेले आहेत। आता प्रसारित करीत आहोत नादब्रह्म हा शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम। आज नादब्रह्म अंतर्गत ऐकूया कर्नाटक शैलीतील संगीत। कंचना मन्यम यांचं गायन ऐकूया। राग हंसध्वनी, अठाना आणि खमास यांना मृदुंगम साथ दिली आहे स्वामीनाथ जयारमण यांनी, तर व्हायोलिनची साथ आहे विश्वनाथ रामास्वामी यांची। ऐकूया कंचना मन्यम यांनी गायलेला सुरुवातीला राग हंसध्वनी जो रूपक तालात निबद्ध आहे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के पहले दिन सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम में मौजूद आकाशवाणी संवाददाता दीपेंद्र के पास। दीपेंद्र, दिल्ली घोषणा पत्र में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है?
2: देखिए, दुनिया के कई हिस्सों में जारी संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव पर ब्रिक्स देशों ने चिंता जताई। ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने दुनिया में सैन्य खर्च में लगातार हो रही तेज बढ़ोतरी पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। इसके अलावा नेताओं ने कहा कि वैश्विक समस्याओं का समाधान बहुपक्षीय सहयोग के जरिए होना चाहिए, जिसमें सभी देशों के अलग अलग विचारों और हितों का जो है सम्मान किया जाना चाहिए। इसके अलावा सतत विकास, भूख और गरीबी खत्म करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर भी जोर दिया गया। वहीं पश्चिम एशिया में तनाव पर भी ब्रिक्स देशों ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। वहीं आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाया है कि आतंकवाद का कोई रूप आपराधिक या पूरी तरह अनुचित है। देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमलों की भी कड़ी शब्द निंदा की, जिसमें लगभग 20 लोगों की जान चली गई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।
0: धन्यवाद दीपेंद्र। ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं द्वारा इस अवसर पर 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। इससे पहले समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करने पर आधारित सत्र के पहले दिन अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने समूह की संस्थागत नीति गति सुनिश्चित करने के लिए ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए एक नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया समूह की अपनी कार्यप्रणाली से शुरू होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बीच कजाकिस्तान के राष्ट्रपति और यूरेशियन आर्थिक संघ के अध्यक्ष कासिम जोमार्त तोकायेव ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि जन स्वास्थ्य की रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। श्री नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव की मौजूदगी में 10 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 12 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से राज्य में मरीजों की बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगी और बीमारियों के खतरे का समय रहते पता लगाने की क्षमता मजबूत होगी। पाकिस्तान के एक मानवाधिकार संगठन ने अधिकारियों पर बलूचिस्तान में सुनियोजित सैन्यकरण और दमनकारी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि हिंसा और विस्थापन नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। मानवाधिकार संगठन ने बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उसने कहा कि इस क्षेत्र में आजीविका का साधन रहे फलों के बाग अब एक ऐसी नीति के तहत विनाश के कगार पर हैं जो भूमि और आजीविका दोनों के लिए खतरा है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

0: संघाची उद्या अंतिम लढत. महिलांच्या टी ट्वेंटी आशिया चषक स्पर्धेतही भारताचा उद्या श्रीलंकेशी अंतिम सामना. याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं. नमस्कार.
1: वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी. आदौ मुख्य वार्ताः. ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य प्रथम दिवसे सर्वसम्मत्या नवदेहली घोषणापत्रम् अंगीकृतम्. घोषणापत्रस्य अंगीकारः सदस्य राष्ट्राणां समन्वितानां संकल्पानां कृते स्पष्ट मार्गदर्शकः इति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी. प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना मलेशिया, वियतनाम, इथियोपिया प्रधानमन्त्रिभिः तथा अबुधाबी युवराजेन सह द्विपक्षीय वार्ता सञ्चालिताः. अद्य सायं चीन राष्ट्रपतिना शी जिनफिंग वर्येण सह संभाषणं विधीयते. षड्वर्षीय स्थगनं समापयता चीन देशेन अस्य मासस्य एकविंशति दिनांकात् ग्वांगझोउ नवदेहली मध्ये नियमित यात्री विमान सेवाः पुनः प्रारप्स्यन्ते. अपि च महिला हॉकी क्रीडायां चीनस्य मुकीनगरे आयोजितायां कनिष्ठ एशिया चषक स्पर्धायां दक्षिण कोरिया देशं 5-1 इति अंकैः पराभूय भारतं अंतिम चरणं प्राविशत. अथ वार्ताः विस्तरेण. अद्य नवदेहल्याम् 18 ब्रिक्स शिखर सम्मेलने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इथियोपिया, मलेशिया, वियतनाम इत्येतेषां देशानां प्रधानमन्त्रिभिः अथ अबुधाबिनः युवराजेन सह द्विपक्षीय गोष्ठीनां श्रृंखलां प्रारब्धवान्. कूटनीतिक वार्तानां अस्याम् आवृत्तौ प्रधानमन्त्रिणा सर्वप्रथमं इथियोपिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा डॉ. आबी अहमद अली सन्निधेन सह उच्चस्तरीय सम्भाषणं विहितम्. विदेश मंत्रालयेन विज्ञप्तौ संसूचितं यत् उभौ नेतारौ द्वयोः देशयोः विशेष रणनैतिक सन्धिं नूतनां औन्नतिं नेतुं संकल्पं गृहीतवन्तौ. गोष्ठ्यां मुख्यतया आर्थिक सहयोगस्य, रक्षा सुरक्षा संबंधानां तथा क्षमता संवर्धनस्य क्षेत्रेषु प्रगतेः समीक्षणं कृतम्. एषा महती सम्पूर्तिः गतवर्षस्य दिसंबर मासे असिस अबाबा नगरे प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक प्रवासस्य परिणामस्वरूपेण सञ्जाता. भारतस्य अध्यक्षतायां नवदेहल्यां समायोक्ष्यमाणस्य 18 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य अवसर अन्तराले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मलेशिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा अनवर इब्राहिम इत्यमुना सह उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्तां सञ्चालितवान्. अस्यां गोष्ठ्यां द्वयोः देशयोः नेतारौ व्यापार निवेश रक्षा सुरक्षा तथा जनात् जनसम्पर्कः इत्येतेषु बहुविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य प्रगतेः समीक्षणम् अकुरुताम्. उभौ नेतारौ अस्मिन् वर्षे प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः मलेशिया प्रवासस्य संकल्पानां निष्पत्तेः अपि सूचनां गृहीतवन्तौ. प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना आसियान भारत सम्बन्धानां सुदृढीकरणे तथा क्षेत्रीय सहयोगे मलेशिया देशस्य निरन्तर समर्थनस्य भूरिशः प्रशंसा कृता. अत्रावधेयं यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वियतनाम देशस्य प्रधानमन्त्रिणा ले मिन् हुङ्ग् इत्यनेन सह उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्. अस्यां गोष्ठ्यां ब्रिक्स सम्मेलने वियतनामस्य सहभागिदेशत्वेन सहभागिता सविशेषं स्वागतीकृता. विदेश मंत्रालयेन संसूचितं यत् अस्मिन् वर्षे वियतनाम राष्ट्रपतेः तोलम वर्यस्य भारत प्रवास वेलायां उच्चस्तरे समुन्नीतायाः संवर्धित व्यापक रणनैतिक सन्धेः प्रगतेः समीक्षणम् अस्मिन् उपवेशने विहितम्. अनेन सहैव प्रधानमन्त्रिणा अबुधाबिनः युवराजेन शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जयद अल नहियान इत्यनेन सह द्विपक्षीय सम्बन्धाः समीक्षिताः. उभौ पक्षौ राजनैतिक सांस्कृतिक वाणिज्यिक ऊर्जा क्षेत्रेषु तथा जनात् जनसम्पर्के आधारितस्य भारत यूएई व्यापक रणनैतिक सहयोगस्य पुनरुच्चारणं चक्रतुः. अद्य सायमन्तराले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनदेशस्य राष्ट्रपतिना शी जिनफिंग इत्यमुना सहापि द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति. प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते. समयमेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन ए आई आर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति. नवदेहल्याः

0: ऐतिहासिक भारत मण्डपे आयोज्यमानस्य 18 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य प्रथम दिवसे एव सदस्य देशैः सर्वसम्मत्या नवदेहली घोषणापत्रम् अंगीकृतम्। सत्रस्यास्य समापने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अस्य घोषणापत्रस्य स्वीकाराय प्रस्तावम् उपस्थापितवान्, यम् नेतारः एकस्वरेण सर्वसम्मत्या च अंगीकृतवन्तः। स्वकीय समापन उद्बोधने प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना संसूचितं यत् अद्य अंगीकृतं नवदेहली घोषणापत्रं ब्रिक्स सदस्य देशानां संधि संकल्पानां कृते एकां स्पष्टां कूटनीतिक दिशिम् अंकयति। तेन विशेषतः प्रतिपादितं यत् एतेषां सर्वसम्मत संकल्पानां प्रत्यक्ष मूर्त परिणामेषु परिवर्तनम् इदानीं सर्वेषां सदस्य राष्ट्राणाम् उत्तरदायित्वं वर्तते।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है, साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सबलं प्रोक्तं यत् अद्यतनेन विचारविनिमयेन एतत् स्पष्टं भवति यत् परिवर्तनशीलस्य विश्वस्य मार्गदर्शनं पुरातनैः अप्रासंगिकैश्च संस्थानैः विधातुं न शक्यते। तेन प्रतिनिधित्वेन संवेदनशीलतायां नियमनिर्माणप्रक्रियासु च आधारभूतपरिष्काराणां महती आवश्यकता प्रतिपादिता। प्रधानमन्त्रिणा संसूचितं यत् ब्रिक्स नेतृभिः भावि प्रौद्योगिकीनां विकासे तथा तासां नियमनविधानेषु ग्लोबल साउथ देशानां समानसहभागिता भवेत् इत्यस्यां नीतौ विशेषबलः प्रदत्तः। तेन प्रतिपादितं यत् निर्णयानां तेषां निष्पत्तीनां च मध्ये विद्यमानम् अन्तरालं केवलं सामूहिककार्यप्रणालीभ्यां समापयितुं शक्यते। भाषणस्य अन्ते प्रधानमन्त्रिणा ब्रिक्स अध्यक्षरूपेण सर्वेषां राष्ट्राध्यक्षाणां रचनात्मक योगदानाय निष्ठापूर्ण सहयोगाय च हृदयेन कृतज्ञता प्रकटीकृता। ब्रिक्स मञ्चस्य स्थापनायाः 20 वर्षपूर्तिं स्मरणीयां विधातुम् अस्मिन् मञ्चे सदस्य देशानां नेतृभिः द्वे स्मारक डाक चिटिके आधारिकरूपेण विमोचिते। नवदेहल्याः भारतमण्डपे आयोज्यमानस्य अस्य शिखरसम्मेलनस्य समावेशी वैश्विकशासनं बहुपक्षवादस्य दृढीकरणञ्च इति विषयकसत्रे स्वकीये उद्घाटन उद्बोधने प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ब्रिक्स निरन्तरता क्रियान्वयन प्रणाल्याः एकं क्रान्तियुगं प्रस्तावम् उपस्थापितवान्। श्रीमोदिना संसूचितं यत् प्रतिवर्षम् अध्यक्षतायाः परिवर्तने सत्यपि संघस्य संस्थागत गतिशीलता तथा पूर्वं तिष्ठेत् तदर्थं ट्राइका प्रणाल्याः माध्यमेन सर्वेषां संकल्पानां निष्पत्तीनां च निरन्तरं पुनरीक्षणं विधास्यते। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना बलपूर्वकं प्रोक्तं यत् ब्रिक्स देशैः आगामि 20 वर्षाणां कृते एका नूतना सुदृढा महत्वाकांक्षी च कार्यसूची रचयितव्या, यस्याः आरम्भः संघस्य स्वकीयात् कार्यप्रणाली परिवर्तनात् एव भवितुमर्हति।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: प्रधानमन्त्री कठिन समये साहाय्यं सुकरं कर्तुं सम्बद्ध देशानां समुद्रीय प्राधिकारिणः कूटनीतिक लक्ष्यं च योजयितुं सिफेयर्स आपत्कालीन समर्थन जालस्य स्थापनायाः प्रस्तावम् अपि अकरोत्। श्रीमोदी अवदत् यत् वैश्विक व्यापारे नाविकानां महतीं योगदानं भवति, तथापि कष्टकाले ते प्रायः स्वसमर्थनस्य अभावम् अनुभवन्ति। चाइना सदर्न एयरलाइंस इत्यनेन अद्य उक्तं यत् ते अस्मिन् मासे 21 दिनांकात् ग्वांगझौ नवदेहली नगरयोः मध्ये नियमित यात्री विमानयानानि पुनः आरभ्य 6 वर्षाणां स्थगनं समाप्यते। 20-अधिक-2000 वर्षे कोविड 19 महामार्याः आरम्भात् अनन्तरं भारत चीन देशयोः मध्ये विमानसेवाः स्थगिताः आसन्। महिला हॉकी क्रीडायां चीनस्य मोकी नगरे आयोजितायां कनिष्ठ एशिया चषक स्पर्धायां दक्षिण कोरिया देशं 5-1 इति अंकैः पराभूय भारतम् अंतिम चरणं प्राविशत् इति वार्ताः।

0: श्रोते हो, प्रसार भारतीच्या वेव्ज OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲपसहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी. संध्याकाळचे 6:30 वाजले आहेत. आता ऐकूया हिंदी कार्यक्रम विविधा.
1: शब्द जब भावनाओं का रूप लेते हैं तो कविता जन्म लेती है, और जब वही कविता जीवन के अलग अलग रंगों, संवेदनाओं और अनुभवों को अपने भीतर समेटती है तो वह श्रोताओं के दिल तक पहुंचती है. आज की हमारी विशेष साहित्यिक प्रस्तुति में हम आपका परिचय करवा रहे हैं एक ऐसी कवयित्री से जो हिंदी कविताओं की विभिन्न विधाओं में अपनी लेखनी के माध्यम से भावों और विचारों को अभिव्यक्त करती हैं. इनकी कविताओं में कहीं प्रेम और संवेदना है, कहीं प्रकृति का सौंदर्य, तो कहीं जीवन और समाज से जुड़े सवाल. आज हमारे साथ हैं पल्लवी रानी, हिंदी की जानी मानी कवयित्री जो विभिन्न विधाओं में कविता लेखन करती हैं. तो आइए सुनते हैं पल्लवी रानी की कविताएं उन्हीं की आवाज और उन्हीं के शब्दों में.

आकाशवाणी मुंबई के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं पल्लवी रानी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अपनी कुछ कविताओं के विविध रंग लेकर, जिसमें समाहित हैं बहुत सारी संवेदनाएं, भाव और रंगोली भावों की, जो निश्चित रूप से आपके हृदय को स्पर्श करेगी। मेरी पहली कविता जो मैं आप सबके समक्ष रखने जा रही हूँ, उसका संदर्भ कुछ इस तरह है कि अपने जीवन की आपाधापी में, अपने महत्वाकांक्षाओं को पाने की चाह में, हम अपनी सही खुशियों के नए अर्थ को ढूंढते हुए, जो सही खुशियां हैं उसको हम छोड़ जाने कहाँ आगे बढ़ चुके हैं। तो मैं अपनी इस कविता के माध्यम से खुशियों का सही अर्थ आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है चलो थोड़ा ठहर जाते हैं। चलो थोड़ा ठहर जाते हैं, भागती दौड़ती सांसों को भी थोड़ी सांस आने देते हैं। चलो थोड़ा ठहर जाते हैं, न मुड़ के देखा न पूछा हाल, बरसों बीत गए खुद से मिले, न मुड़ के देखा न पूछा हाल, ख्वाहिशों की सड़क पर दौड़ते, पेशानी पर खिंच गई लकीरें और उम्र की सीढ़ी से झांकते सफेद बाल। ख्वाहिशों की सड़क पर दौड़ते, पेशानी पर खिंच गई लकीरें और उम्र की सीढ़ी से झांकते सफ़ेद बाल, कोलाहल की ज्वालामुखी में धधकते सन्नाटों का चित्कार, झंझावतों में उठते मन के बयार, झंझावतों में उठते मन के बयार, कहीं से तो राहते ढूंढ लाते हैं, चलो थोड़ा ठहर जाते हैं। कहीं से तो राहते ढूंढ लाते हैं, चलो थोड़ा ठहर जाते हैं, भागती दौड़ती सांसों को भी थोड़ी सांस आने देते हैं, चलो थोड़ा ठहर जाते हैं। कमरे में खड़ा वो आईना, कमरे में खड़ा वो आईना कुछ गुमसा लगता है, नजरें चुरा कर गुजरे कि कहीं खुद को न दिख जाए दिल का हाल। चलो ना आज आईने में खुद को देख मुस्कुराते हैं, चलो ना आज आईने में देख खुद को मुस्कुराते हैं, थोड़ा ठहर जाते हैं, भागती दौड़ती सांसों को भी थोड़ी सांस आने देते हैं, चलो थोड़ा ठहर जाते हैं। तुम्हें याद है क्या वो आखिरी गाना, कभी सुनहरी सांझ तो कभी सर्द गुलाबी सुबह को अपने गीतों में भर लाना। तुम्हें याद है क्या वो आखिरी गाना, कभी सुनहरी सांझ तो कभी सर्द गुलाबी सुबह को अपने गीतों में भर लाना। सुनो ना आज फिर गुनगुनाते हैं, सुनो ना आज फिर गुनगुनाते हैं, चलो थोड़ा ठहर जाते हैं, भागती दौड़ती सांसों को भी थोड़ी सांस आने देते हैं, चलो थोड़ा ठहर जाते हैं। बहुत हुई ये आपाधापी, बहुत हुई ये आपाधापी, चैन न दिन को रातें जागी, पलछिन लम्हा मरता जाए, पलछिन लम्हा मरता जाए, सांस आस मन चैन न पाए। ऐसे में बेचैनियों को कहीं दूर छोड़ाते हैं, ऐसे में बेचैनियों को कहीं दूर छोड़ाते हैं,

चलो थोड़ा ठहर जाते हैं, भागती दौड़ती सांसों को भी थोड़ी सांस आने देते हैं, चलो थोड़ा ठहर जाते हैं। मुझे लगता है कि ये हम सभी की एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ से हम सभी बचकर नहीं निकल पाते। आगे की पंक्तियाँ सुनिएगा कि तैयारियाँ तो बहुत की, कमाया बहुत था, गैर जरूरी या जरूरत कोई था, गैर जरूरी या जरूरत कोई, दिखावे की रस्म को निभाया बहुत। किरचे चकाचौंध की चुभती है नस नस में, किरचे चकाचौंध की चुभती है नस नस में, किस्ते चुकाते रहे उम्र भर, रहा खुद पे ही खुद का बकाया बहुत। किस्ते चुकाते रहे उम्र भर, रहा खुद पे ही खुद का बकाया बहुत। चलो अब थोड़ा जी आते हैं, चलो अब थोड़ा जी आते हैं, सब सीखे न सीखा जीना, थोड़ा जीना सिखाते हैं, चलो थोड़ा ठहर जाते हैं, भागती दौड़ती सांसों को भी थोड़ी सांस आने देते हैं, चलो थोड़ा ठहर जाते हैं, चलो थोड़ा ठहर जाते हैं।

और जब बात जिंदगी की आपाधापी की चली है, तो क्यों ना हम समझें कि आखिर जिंदगी क्या है, जिंदगी का संदर्भ क्या है, जिंदगी के सही मायने क्या हैं, इस पूरे जगत में कौन अपना और कौन पराया है, जिन चकाचौंध के पीछे हम भागते फिरते हैं, उसकी असली सच्चाई क्या है। आइए अपनी अगली कविता के माध्यम से मैं जिन भावों को आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ, उससे आप सभी जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। मेरी अगली कविता का शीर्षक है जिंदगी चीज क्या।

धन्यवाद। जीवन पथ पर चलते चलते सुख दुख की छाँव में हम जाने कितने झंझावतों से गुजरते हैं, कितनी परेशानियाँ, कितने संघर्षों का हम सामना करते हैं। और आज के इस भौतिकवादी परिवेश में जिस तरह का जो माहौल है, हम बहुत ही जल्द अवसाद में चले जाते हैं। आज के बच्चे हों या बड़े हों, सबका एक सा हाल है। तो क्यों ना उस निराशा को अपने मन से हटाकर हम प्रकाश की तरफ बढ़ें, प्रेरणा की किरण को अपने साथ लेकर हम जीवन में आगे कदम बढ़ाएं। इसी उद्देश्य को लेकर मेरी अगली रचना है, जिसका शीर्षक है ये किस्सा है प्रयास का। असीम अंधकार में विपत्ति के प्रहार में, असीम अंधकार

मरुस्थलों के गाल में समय की उल्टी चाल में, मरुस्थलों के गाल में समय की उल्टी

तो जब आप मझधार में खड़े हों तब हम क्या करें, ये सुनिएगा मेरी अंतिम पंक्तियों में। जो राहरों के आंधियां तुम खड़े मझधार हो, तो भर लो मन को जिसे, तो भर लो मन को जिसे, हो जैसे सूर्य रश्मियां, तो भर लो मन को जिसे, हो जैसे

हिस्से का धन्यवाद। जो बात चली है प्रेरणा और प्रयास की, अपने संकल्प और विश्वास की, तब भला उदासी मन के आंगन में क्यों छाई रहेगी। उदासियां कैसे दूर हों, अपने इन्हीं भावों को मैं कविता में सजा कर लाई हूं। हमें कहां से प्रेरणा मिल सकती है, किस किस तरह से प्रेरणा मिल सकती है, ये हमारे देखने के और समझने के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तो मेरी इन संवेदनाओं के साथ अपने आप को निश्चित रूप से आप सभी जोड़िएगा। मेरी अगली कविता का शीर्षक है, सुनो उदासी क्यों है। बगीचे के फूलों ने मुझे आवाज लगाई और पूछा, सुनो उदासी क्यों है। बगीचे के फूलों ने मुझे आवाज लगाई और पूछा, सुनो उदासी क्यों है। इन प्यारी आंखों में उतर आई, ये जिंदगी तो तुम्हारी है नहीं चीज कोई पराई। ये जिंदगी तो तुम्हारी है नहीं चीज कोई पराई। देखो हमने रंग कितने उकेरे हैं, देखो हमने रंग कितने उकेरे हैं, हर ओर खुशबू के मेले हैं, हर ओर खुशबू के मेले हैं। यूं तो हम भी कल शाख छोड़ जाएंगे, यूं तो हम भी कल शाख छोड़ जाएंगे, मुरझाकर इस दुनिया से नाता तोड़।

0: जाएंगे। यूं तो हम भी कल शाख छोड़ जाएंगे, मुरझा कर इस दुनिया से नाता तोड़ जाएंगे, मगर जाते जाते हर जर्रे में रंगीन खुशबुएं बिखेर जाएंगे, हर उदास दिल में सुकूने रंगत फिर जाएंगे। तो सुनो, उदासी क्यों है इन प्यारी आंखों में उतर आई, तो सुनो उदासी क्यों है। धन्यवाद।
1: आज की इस साहित्यिक यात्रा में अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने और अपनी रचनात्मक संवेदनाएं साझा करने के लिए पल्लवी रानी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है उनकी कविताओं के ये शब्द और भाव आपके मन में भी देर तक गूंजते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आकाशवाणी मुंबई के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राजू कुमार भारती ने। इसी के साथ मुझे यानी दीपक केसावलेकर को दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
2: श्रोते हो, याचबरोबर हिंदी कार्यक्रम विविधा इथे समाप्त होत आहे। प्रसार भारतीच्या वेव्ज OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲपसहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। संध्याकाळची 6:51 झालेली आहेत। ऐकूया काही संदेश।
3: माझा आभार माझा शिवार या कृषीविषयक राज्यस्तरीय प्रसारणात ऐका। जनावरांसाठी निकृष्ट चाऱ्याची गुणवत्ता वाढविणे या विषयावर डॉक्टर महेश जावळे यांची मुलाखत। सोबतच ऐका शेताच्या बांधावर या मालिकेत प्रगत शेतकरी प्राची मिरासे यांची मुलाखत। हा कार्यक्रम येत्या सोमवारी म्हणजेच 14 सप्टेंबर 2026 रात्री 7:30 आकाशवाणीच्या सर्वच केंद्रांवरून प्रसारित केला जाईल।

0: आपण ऐकलत गीत सुरेश वाडकर, वेला शेंडे आणि ऋषिकेश रानडे यांच्या आवाजात. चित्रपट होता मंडळ आभारी आहे. गीतकार होते आरती देसाई आणि संगीतकार अविनाश विश्वजीत. या आता ऐकूया काही संदेश.
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे. हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है. साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है. हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह.
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है.
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी.
3: मैत्रिणींनो, दिनांक 13 सप्टेंबर 2026 रविवार रोजी दुपारी 12 वाजता वनिता मंडळ या कार्यक्रमाच्या राज्यस्तरीय प्रसारणामध्ये आपण सुरुवातीला ऐकू शकाल शिक्षण तसेच अभिनय क्षेत्रात यश संपादित केलेल्या प्राध्यापिका डॉक्टर अश्विनी भालेकर यांच्या मुलाखतीचा भाग दुसरा. आणि त्यानंतर वनिता मंडळ या कार्यक्रमामध्ये आपण ऐकू शकाल स्त्रियांमधील वाढता लठ्ठपणा याविषयी आयुर्वेद तज्ज्ञ आणि आहार मार्गदर्शक डॉक्टर स्मिता कुलकर्णी यांच्या मुलाखतीचा भाग दुसरा. ही आकाशवाणी परभणी केंद्राची निर्मिती असेल.
4: माझा आभार माझा शिवार या कृषी विषयक राज्यस्तरीय प्रसारणात ऐका. जनावर

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: श्रोतेहो, याचबरोबर सुगम संगीताचा कार्यक्रम भावधारा इथेच समाप्त होत आहे. आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी. रात्रीचे 8:45 होत आहेत. ठीक 8:45 समाचार संध्या, रात्री 9 न्यूज ऍट 9, 9:15 स्पॉटलाईट दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होतील. आम्ही ते सहक्षेपित करत आहोत.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी. मुख्य समाचार. ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया. बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की. घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान. पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह. भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा. कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया. कहा, मतभेदों

0: को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत वांछित अमृतपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराया और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आर्यना सबालेंका का सामना एलिना रिबाकिना से। और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। श्री मोदी ने कहा कि निर्णयों और उनके परिणामों के बीच के अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। ब्रिक्स के वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने दो स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
1: गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
1: क्या हम सी फेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है।
0: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकताओं पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में

0: भी उचित भूमिका निभानी चाहिए।
1: रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति भारत की विभिन्न स्तरों पर वर्षों से चले सहयोग के परिणाम स्वरूप संभव हुई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक शासन संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और आज की वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
2: मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
3: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
0: ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया, जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो।
4: ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति, सुरक्षा और स्थिरता का रास्ता तलाशने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने का भी आह्वान किया। उन्होंने सभी पक्षों से गाजा पट्टी में युद्ध विराम और मानवीय सहायता की पूर्ण तथा निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने दोहराया कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान केवल बातचीत से ही संभव है। आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई भी रूप पूरी तरह अनुचित है। ब्रिक्स देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने आज पुष्टि की कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर आबी अहमद अली के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से चर्चा की। इसके बाद श्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता की।

0: दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा तथा दोनों देशों के लोगों के संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक में श्री मोदी ने भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वियतनाम का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ भी वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के महत्व को दोहराया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेस पारिल्ला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच दक्षिण दक्षिण सहयोग पर सार्थक बातचीत हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ कुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया है। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान व निकोबार में गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में कल गर्म और उमस भरा मौसम रहने के आसार हैं। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल आज रात एलिना रायबाकिना और आरेना सबालिंका के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में एलिना ने कोको गॉफ को और आरेना ने जेसिका पेगुला को हराया था। पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में बेन शेल्टन ने फ्रांसिस टियाफो को और अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने करेन खचनोव को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान, पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरेना सबालिंका का सामना एलिना रायबाकिना से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वर्षा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। BRICS nations adopt New Delhi Declaration 2026, reaffirming commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation. Declaration calls for economic and developmental cooperation among member states, urges dialogue and diplomacy to resolve disputes, particularly in West Asia. New Delhi says adoption of the declaration among defining outcomes of India's BRICS chairship. Prime Minister Narendra Modi says gap between decisions and outcomes must be bridged through partnership and collective action. Emphasizes BRICS moving forward with approach of taking

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। संस्कृति को अगर किसी एक शब्द में समझना हो तो संभवतः वो शब्द होगा जीवन। हम किन परंपराओं को सजोते हैं, किन नदियों के किनारे अपनी स्मृतियां छोड़ते हैं, किन पर्वों में सामूहिक उल्लास के रंग भरते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या गाते हैं, किस भाषा और बोली में अपनी पीड़ा दर्ज करते हैं, इन सब में हमारी संस्कृति सांस लेती है। और इसीलिए भाषा भी केवल संवाद का माध्यम नहीं है। भाषा में हमारी स्मृतियां हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारी जीवन दृष्टि है। जरा सोचिए, हमारी दादी नानी की कही कोई पुरानी बात, गांव की कोई लोक कथा, किसी त्योहार का गीत, किसी रिश्ते को पुकारने का अपना अलग ढंग, क्या ये महज शब्द है? नहीं, इन शब्दों में एक पूरी जीवन पद्धति होती है। एक समाज, उसकी स्मृतियां, उसकी परंपराएं और उसकी संवेदनाएं। दरअसल भाषा और बोलियां संस्कृति की सबसे जीवंत आवाज हैं। हम जैसा जीते हैं वैसा ही बोलते हैं, और जो बोलते हैं

0: वो धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हमारे देश की खूबसूरती ही इसकी विविधता है। यहाँ भाषा बदलती है तो उसके साथ लोक बदलता है, लय बदलती है, संबोधन बदल जाते हैं, लेकिन भावनाओं की धड़कन वही रहती है। हिंदी की अपनी खूबसूरती भी इसी में है कि उसने इस विविधता से संवाद किया। अलग अलग भारतीय भाषाओं, बोलियों और लोक परंपराओं से शब्द और भाव ग्रहण किए, यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं से भी। इसीलिए हिंदी कोई बंद कमरा नहीं, बल्कि कई दिशाओं से आती हुई सांस्कृतिक हवाओं के लिए एक खुली खिड़की है। और जब कोई भी भाषा संस्कृति को अपने भीतर समेटती है तो वो सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं रहती, वो हमें अपने होने का अर्थ भी बताती है। भाषा से संस्कृति की ओर और संस्कृति से प्रकृति की ओर, अब एक ऐसी यात्रा जिसमें रास्ता केवल पैरों से नहीं स्मृतियों और संवेदनाओं से भी तय होता है। नर्मदा, जिसे भारत की जीवनदायिनी नदियों में से एक माना जाता है, जिसके तटों पर सभ्यताएं, लोक विश्वास और अनगिनत कथाएं आकार लेती रही हैं। विश्व नदी दिवस के उपलक्ष्य में सुनिए प्रख्यात चित्रकार, लेखक और नर्मदा प्रेमी स्वर्गीय अमृतलाल वेगड़ के स्वरों में उनकी नर्मदा परिक्रमा के वृत्तांत का एक अंश, तीरे तीरे नर्मदा।
1: हम लोग नर्मदा पद यात्रा कर रहे थे और अमरकंटक जा रहे थे। छिनगांव का कुआं गांव के बाहर एक घाटी में था। मेरे साथी बड़े सवेरे वहां जाकर नहाए। मैं गया जरूर पर नहाया नहीं, ठंड के कारण हिम्मत ही न हुई। मन को समझाया, नहाऊंगा तो नर्मदा में, कुओं तालाबों पर नहीं। कह हंसा मोती चुगे, कह भूखे रही जाए। छिनगांव से बरछा, कच्ची धूल भरी सड़क से उतरने लगे तो नीचे दूर मैदान में से बहती हुई धूप नहाई नर्मदा दिखाई दी। अब प्राय अमरकंटक तक नर्मदा मैदान में से ही बहती है। पंचमनाथ पुजारी जब 48 बरस का था तभी पत्नी का देहांत हो गया था, अभी 70 का है और पूरी तरह से स्वस्थ है। कहता है, मैं बाहर भी हूं और भीतर भी हूं। अगर हम लोग भी बीच बीच में भीतर चले जाया करें और देखते रहें कि कहीं हमारी आत्मा को फफूंद तो नहीं लग गई तो कितना अच्छा हो। दूसरे दिन भी लगातार पानी बरसता रहा, हम कहीं जा नहीं सकते। लेकिन किसानों को कई दिनों से इस वर्षा की प्रतीक्षा थी, उनकी फसल सूख रही थी, उसे नया जीवन मिला। वैसे किसानों को इससे कहीं अधिक पानी की जरूरत थी। बादलों को आकाश से नीचे उतारने की विद्या केवल वनों को आती है और हम अपने अधिकांश वन काट चुके हैं। अब बादलों को आकाश की अटारी से नीचे धरती पर भला कौन उतारे। रात लुकामपुर में रहे, रात्रि के अंतिम प्रहर में ओस गिरनी शुरू हो गई थी। एक तो कड़ाके की ठंड, ऊपर से ओस की बुंदनियां, सवेरे घना कोहरा। कोहरे के छटने का काफी इंतजार किया लेकिन छटा नहीं तो कोहरे और ओस की फुहार में ही चल दिए। चलते चलते आसपास के सौंदर्य को मन में उतारता जाता, सोचता क्या इस सौंदर्य की गूंज अपनी कृतियों में पैदा कर सकूंगा। लेकिन इसकी चिंता अभी क्यों करूं, अभी तो इसका भरपूर आनंद लूं, अपने हृदय में उतार लूं और पकने के लिए वहीं छोड़ दूं। समय आने पर वह स्वयं बाहर आएगा, इसमें समय लगता है। अगर मैं कलाकार हूं तो मुझ में धैर्य होना चाहिए। दोपहर को खाना नहीं बनाते लेकिन रामघाट के प्रपातों को देखकर लगा कि आज खाना यही बने। देर तक मैं उन प्रपातों के पास मड़राता रहा। शाम तक दूधी संगम पहुंच गए लेकिन एक ग्रामीण ने कहा कि आप दूधी पार करके हर्रा जाइए, वहां कहीं न कहीं रहने की व्यवस्था हो जाएगी। आधी रात को आकाश में शरद पूर्णिमा का चंद्र था, चंदन का घाट और पूर्णों का चांद। अपनी नर्मदा परिक्रमा के दौरान मुझे कई पूर्णिमाएं देखने का अवसर मिला है।

0: और हर बार मैंने नई नई उपमाओं से चांद और चांदनी का वर्णन किया है। सवेरे आगे बढ़े, बसंतपुर और कंचनपुर होते हुए ठाड़ पातर पहुंचे। इस बार की यात्रा में एक सुखद परिवर्तन देखने मिला। अधिकांश गांव में प्राथमिक पाठशालाएं खुल गई हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। जहां भी शाला मिली हम वहां जरूर गए और शिक्षक से अनुमति लेकर मैं बच्चों को नर्मदा के बारे में बताता। अगर बच्चे जरा बड़े होते तो अपनी पुस्तक सौंदर्य की नदी नर्मदा में से उनके गांव से संबंधित अंश पढ़कर सुनाता। नर्मदा तट के कई गांवों में मैंने बच्चों के समक्ष रचना पाठ किया। उसी निष्ठा से, जिस निष्ठा से नवंबर 2001 में भोपाल के भारत भवन में साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों के समक्ष किया था, ठाड़ पाथर की पाठशाला को देखते ही मेरी बांछें खिल गईं। प्यारे बच्चों, हर बच्चे को सबसे अधिक प्यार अपनी माँ से होता है। माँ के बिना वह रह नहीं सकता। इससे हुआ यह कि जो भी चीज हमें बहुत प्यारी होती है उसे हम माँ कहने लगे। जैसे हमारा देश, हम उसे भारत माता कहते हैं। इसी प्रकार यह जो नर्मदा बह रही है ना, वह हमें इतनी प्यारी लगती है कि हम उसे भी माँ कहते हैं, नर्मदा मैया। बच्चों, तुम कितने भाग्यवान हो कि नर्मदा की गोद में पल बढ़ रहे हो। पता नहीं बड़े होकर तुम इसी गांव में रहोगे या और कहीं जाओगे। जहां भी जाओ अपनी इस नदी को कभी मत भूलना। तुम जहां भी जाओगे इस नदी का एक अंश तुम्हारे साथ जाएगा।
1: ये थे चित्रकार, लेखक और नर्मदा प्रेमी स्वर्गीय अमृतलाल वेगड़। स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी जबलपुर। देश के मध्य में नदी की धारा से अब चलते हैं पूर्वोत्तर की ओर, जहां संस्कृति केवल उत्सव नहीं समुदाय की सामूहिक स्मृति और प्रकृति के साथ उसके रिश्ते की अभिव्यक्ति है। मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में बसने वाला गारो समुदाय सूर्य देवता को समर्पित जिस उल्लासपूर्ण नृत्य उत्सव के साथ अपनी सामुदायिक जीवन ऊर्जा को व्यक्त करता है वो है वांगला। और इसी वांगला के लोकरंग को समेटे है हमारी अगली प्रस्तुति, ये लघु रूपक आशीर्वाद मिसी सालजोंग का।
2: हरे पहाड़, बादलों से घिरा आसमान और इसके बीच गूंजती ढोल की सामूहिक थाप, ये है मेघालय का गारो समुदाय का वांगला। एक ऐसा लोक उत्सव जिसमें संगीत है, नृत्य है और प्रकृति के प्रति आभार की भावना भी।
3: भारत के पूर्वोत्तर की जनजातीय परंपराओं में गारो समुदाय की अपनी विशिष्ट पहचान है। गारो समुदाय मुख्य रूप से मेघालय में निवास करता है। हालांकि असम, त्रिपुरा और नागालैंड में भी इनकी बसावटें हैं।
2: वांगला फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला पारंपरिक उत्सव है। ये मूलतः गारो समुदाय के सूर्य देवता मिसी शालजो के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि के उत्सव का अवसर है।
3: और इसकी सबसे खास पहचान है ढोल की सामूहिक थाप। शायद इसी वजह से वांगला को कहा जाता है 100 ढोलों का उत्सव।
2: इस जीवन परंपरा की खूबसूरत झलक इस साल दिल्ली में आयोजित नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट फेस्टिवल यानी नेस्ट फेस्ट 2026 में भी देखने को मिली।
3: लेकिन आखिर वांगला नृत्य की खासियत क्या है, इसकी प्रस्तुति में कौन सी लय और भाव छुपे हैं?
4: मेरा नाम अनालिशा है, मैं मेघालय से हूँ, गारो ट्राइब से। तो ये हमारा वंगला डांस जो है वो एक्चुअली हमारे एंसेस्टर्स ने शुरू करा था। जो ट्राइब है मेघालय की, उसका एक गॉड है जो कि हम बोलते हैं मिशी साल्जो, जो कि सन के गॉड है। तो हम उनको हमारी अच्छी हार्वेस्ट को प्रेज करने के लिए या फिर वर्शिप करने के लिए हम ये वंगला डांस परफॉर्म करते हैं। 100 ड्रम्स वंगला ये

0: फेस्टिवल है, इस पे हम वनगला परफॉर्म करते हैं.
1: हमारा जो ड्रम्स होता है, हम खुद ड्रम्स बजा के हम डांस करते हैं. जो लड़के लोग होते हैं वो ड्रम्स, हमारे ड्रम्स जो होते हैं उसको दामा बोलते हैं, लंबे ड्रम होते हैं, वो लड़के लोग डांस के टाइम पे उसको कैरी करते हैं और वो बजाते हैं उस टाइम पे, तो वही हमारा इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिक हो जाता है.
2: पारंपरिक दामा ढोल की थाप पर जब कलाकार एक साथ कदम मिलाते हैं तो जैसे पूरी प्रस्तुति में एक लय सी दौड़ जाती है.
3: ढोल की यही धुन वांगला को गति देती है, 100 ढोलों के उत्सव की पहचान भी देती है.
2: वांगला की खूबसूरती सिर्फ इसके लय और कदमों में नहीं, इसके रंगों में भी दिखाई देती है. पारंपरिक वेशभूषा के रंग बिरंगे परिधान और आभूषण इस नृत्य को एक अलग विजुअल पहचान देते हैं.
3: आइए सुनते हैं अनालिशा को.
1: जब हम ये डांस परफॉर्म करते हैं तो यूजुअली हम लोग अपना ट्रेडिशनल अटायर पहनते हैं. ट्रेडिशनल अटायर जैसे कि हम लोग सर पे बांधने का कपड़ा पहनते हैं, रैप अराउंड स्कर्ट होता है. मैं अगर गारो में बोलना चाहूँ तो एक दोमे होता है, दोमे जो होता है वो हम सर पे लगाते हैं, वो मुर्गी के पंख होते हैं. और एक खोतप होता है वो हम सर पे बांधते हैं, कपड़ा जैसा होता है. तो फिर हम इयररिंग्स भी पहनते हैं, उसको हम नाथापसी बोलते हैं. और नेकलेस भी पहनते हैं, लंबे लंबे नेकलेस, उसको हम रुकतुक बोलते हैं या फिर रुकमाचू. और हम जो बेल्ट पहनते हैं उसको हम सिंखी बोलते हैं. और जो हम हाथ में जो चूड़ियां पहनते हैं उसको हम चकसान बोलते हैं. हाँ, और जो हम नीचे जो रैप अराउंड स्कर्ट पहनते हैं उसको हम मंदा बोलते हैं.
3: इस पूरी प्रस्तुति का नेतृत्व करने वाला एक खास कलाकार भी होता है जिसे कहा जाता है मदग्रिक. आइए सुनते हैं वियोशन से.
4: तो जो मदग्रिक का जो ड्रेस है वो सबसे अलग होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा वॉरियर होता है जो अपने कम्युनिटी को लीड करेगा. तो उसका जो कपड़ा होता है उसका पंडरा होता है, जो वो गमछा की तरह उसको पहना जाता है, उसको पंडरा कहते हैं. और इसको रुकमाचू कहते हैं, जो हम गले में पहनते हैं उसको रुकमाचू कहते हैं. और उसके बाद हम डोमे भी पहनते हैं. डोमे बेसिकली जो बर्ड है, वाइल्ड बर्ड्स से उनको बनाया जाता है.
2: तो ये है गारो समुदाय का वांगला, जहाँ ढोल की हर थाप में उत्सव की खुशी है, हर कदम में सामूहिकता की लय है और हर रंग में अपनी संस्कृति पर गर्व.
3: समय बदला, जीवन शैली बदली, लेकिन वांगला की थाप आज भी गूंज रही है, अपनी परंपरा, अपनी पहचान और अपनी जड़ों को साथ लेकर. संस्कृति भारती के लिए मैं हूँ प्रांजल.
2: और मैं नेत्रा.
5: आशीर्वाद मिसी सालजोंग का. गारो समुदाय के वांगला नृत्य उत्सव पर केंद्रित लघु रूपक अभी आपने सुना. प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश. लोक से शास्त्र, परंपरा से पर्व और अब गणपति बप्पा की भक्ति और उत्सव धर्मता के रंग. भारत के अलग अलग हिस्सों में पर्वों की अपनी अपनी छवियां हैं, अपनी ध्वनियां हैं, अपनी परंपराएं हैं. महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तो जैसे सार्वजनिक जीवन और सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न हिस्सा ही है. आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी पर ये विशेष प्रस्तुति गणपति बप्पा मोरिया.

0: पुणे का गणेशोत्सव आज जिस तरह से पूरे जोश और उत्साह से मनाया जाता है, उसकी शुरुआत के पीछे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का बड़ा योगदान है। सन 1893 में लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप दिया। उस समय गणपति की पूजा ज्यादातर घरों में ही होती थी। लोकमान्य तिलक ने गणपति उत्सव के बहाने लोगों को एक साथ लाया। गणेशोत्सव को उन्होंने अनंत चतुर्दशी तक मनाने की परंपरा को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे पूजा के साथ भजन, कीर्तन, भाषण और तरह तरह के कार्यक्रम भी होने लगे। उस समय देश अंग्रेजों के शासन में था, इसलिए इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों में जागरूकता और देश के लिए कुछ करने की भावना भी पैदा होने लगी। शुरुआत में सन 1893 में पुणे में 3 और मुंबई में 2 जगह सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाया गया था। धीरे धीरे यह उत्सव पुणे से निकलकर महाराष्ट्र के दूसरे शहरों तक और अब तो सारे देश में ही नहीं विदेश में भी पहुंच गया है। पुणे के गणेशोत्सव की एक खास पहचान है यहाँ के प्रतिष्ठा प्राप्त 5 गणेश, जिसे मराठी में माना से 5 गणपति कहते हैं। इनमें श्री कस्बा गणपति को पुणे का ग्राम दैवत माना जाता है।
1: नमस्ते, मैं नीलेश वकील कार्याध्यक्ष, मैं बात कर रहा हूँ पुणे के प्रथम नामांकित मंडल से, श्री कस्बा गणपति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल से। 1893 में यानी 1893 में ये गणेशोत्सव मंडल की हमारे स्थापना हुई और तब से ये उत्सव चलते आ रहा है। पहला मान विसर्जन का यानी पहला नंबर हमको दिया जाता है। गणेशोत्सव क्या है तो कलावंत, विचारवंत, बुद्धिवंत इन लोगों का उत्सव यानी गणेशोत्सव, यानी सब लोग आके ये उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। गणेशोत्सव की और एक खासियत है कि सामाजिक काम यानी सोशल वर्क। इसी तरह से हम लास्ट 25 साल से ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं।
0: इसके बाद तामड़ी जोगेश्वरी, गुरुजी तालीम, तुलसीबाग और केसरीवाड़ा के गणपति आते हैं।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित तिलक, मैं अध्यक्ष हूँ केसरी गणेश उत्सव का। अलग अलग प्रोग्राम्स रखे जाते हैं केसरीवाड़ा में, कोई लेक्चर्स हो, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स रखे जाते हैं, कॉम्पिटिशन रखी जाती है, ब्लड डोनेशन कैंप रखा जाता है। ऐसे पूरे 10 दिन कार्यक्रम केसरी गणेश उत्सव के माध्यम से किया जाता है। अगर कोई प्रेजेंट इशू हो तो उसके ऊपर भी लेक्चर्स ये केसरी गणेश उत्सव के माध्यम से हमेशा कंडक्ट किया जाता है।
0: गणपति की स्थापना से लेकर अनंत चतुर्दशी के विसर्जन तक पूरा शहर जैसे उत्सव में डूबा रहता है। कहीं ढोल ताशों की गूंज सुनाई देती है तो कहीं सुंदर सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाई देते हैं।

0: श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति के बारे में हेमंत रास ने बताते हैं।
1: जय गणेश। श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणेशोत्सव 135 साल यहाँ पुणे में विराजमान हो रहे हैं। अभी श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति का परमानेंट मंदिर हो गया है। यहाँ बहुत बड़ी भीड़ रहती है। उत्सव में 10 दिन में 2 करोड़ लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस साल हमने वृंदावन का प्रेम मंदिर यहाँ मंडप में बनाया है, जो दगड़ूशेठ हलवाई गणपति के दान पेटी में जो भाविक अपना योगदान देते हैं, उससे हम मानव सेवा का महामंदिर बनाते हैं।
0: भाऊ रंगारी गणेशोत्सव के अध्यक्ष संजीव जावड़े,
2: ये जो उत्सव जो चालू हुआ वो 1892 में भाऊ रंगारी इन्होंने चालू किया उनके साथीदारों के साथ, और उन्होंने एक मूर्ति बनाई जो राक्षस को वध करती है, और ये मूर्ति इको फ्रेंडली है। और 1892 से आज तक हमारे ट्रस्ट ने किसी के पास चंदा लिया नहीं है, हम गुलाल नहीं यूज करते। और तीसरी बात यानी हमारे जो समय म्यूजिक या गीत जो रहते वो भक्ति गीत रहते, और वो भी मॉडरेट लेवल नॉइस पे।
0: पुणे का गणेशोत्सव सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि लोगों को

0: लेने वाला, हमारी संस्कृति से जोड़ने वाला एक खास उत्सव बन गया है।
1: गणपति बप्पा मोरया, गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी पर ये विशेष प्रस्तुति आपने सुनी आकाशवाणी पुणे के सौजन्य से। उत्सव हमें जोड़ते हैं और शिक्षा हमें सशक्त बनाती है। साक्षरता केवल अक्षरों को पहचान लेने का नाम नहीं, ये अपने अधिकारों को समझने, अपने निर्णय स्वयं लेने और दुनिया को नए नजरिए से देखने की क्षमता भी है। शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में अब एक ऐसी कहानी जिसने साक्षरता की उपलब्धि को एक भौगोलिक पहचान से जोड़ दिया, मिजोरम की उस यात्रा की कहानी जिसने उसे साक्षरता के शिखर तक पहुंचाया। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साक्षरता का मिजो शिखर।
2: साक्षरता का अर्थ केवल वर्णमाला पहचानना या हस्ताक्षर करना नहीं है। वास्तविक साक्षरता वो है जो नागरिक को अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और समाज के प्रति उसके योगदान का एहसास भी कराए। हाँ, शुरुआत जरूर अक्षरों की पहचान से होती है।
3: सितंबर का ये समय देश भर में पठन पाठन और गुरु परंपरा के सामाजिक महत्व पर मंथन का अवसर देता है। ये समय हमें ये देखने का अवसर भी देता है कि नीतियाँ कागजों से उतरकर धरातल पर कितना प्रभाव छोड़ रही हैं।
2: इसी उजाले की मिसाल बनकर उभरा है भारत के पूर्वोत्तर का सुंदर राज्य मिजोरम। भारत सरकार के नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम ने 98.2% की कार्यात्मक साक्षरता हासिल करके देश में पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त किया है।
3: पर जानते हैं, दुर्गम पहाड़ियों और बीहड़ रास्तों के बीच बसी आबादी में इतना बड़ा बदलाव केवल कागजी दावों से नहीं होता। जब जमीन पर जाकर एक एक घर का सर्वे किया गया तो देखा गया कि आखिरी पड़ाव पर लगभग 3000 ऐसे लोग बचे थे जो अक्षरों की दुनिया से दूर थे।
2: और यहाँ मिजोरम की सांस्कृतिक चेतना का एक सुंदर रूप देखने को मिलता है जिसे स्थानीय भाषा में कहते हैं तलांगना। जैसे ही सर्वे के आंकड़े सामने आए तो बिना किसी आर्थिक लाभ की परवाह किए लोकल वॉलंटियर्स और युवा खुद आगे आ गए।
3: इन युवाओं ने गांव-गांव जाकर अपने से बड़ों को पढ़ाना शुरू किया और एक अनोखा कम्युनिटी बॉन्ड बना, यानी तलांगना। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आधुनिक कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल को समझने के लिए आइए सुनते हैं भारतीय जनसंचार संस्थान आइजोल परिसर के प्राध्यापक डॉक्टर वनलाल रोहता को।
4: मिजोरम में जीवन को करीब से देखने और समझने के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि मिजो समुदाय का पढ़ना, पुस्तकों और शिक्षा के साथ ऐतिहासिक रूप से गहरा और विशिष्ट संबंध रहा है। जब ईसाई मिशनरी मिजोरम आए तो उन्होंने रोमन लिपि का प्रयोग करते हुए मिजो भाषा के लिखित रूप को विकसित और प्रचलित किया। मेरे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि पढ़ने की संस्कृति केवल उच्च शिक्षित लोगों तक सीमित नहीं थी। परिवारों में मनोरंजन और रुचि के लिए पढ़ने की भी एक मजबूत परंपरा रही है। सोशल मीडिया के दौर से पहले माता पिता द्वारा बच्चे को सोने से पहले कहानियाँ सुनना या सुनाना काफी आम बात थी। मेरा मानना है कि मिजोरम की उच्च साक्षरता दर की जड़ें समुदाय की मजबूत सहभागिता की संस्कृति में निहित है। मिजो दर्शन में निहित त्रावमेना अर्थात बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना और उनकी सहायता करना, उल्लास अर्थात समाज के सभी वर्गों के लिए आजीवन सीखने की अवधारणा, या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भी इसी सामुदायिक भावनाओं को महत्व दिया गया है। किसी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए 95% साक्षरता को मानक माना गया है। उल्लास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक मुझे इसमें स्वयं सेवी शिक्षकों की भूमिका लगती है। मिजोरम में इन स्वयं सेवी शिक्षकों में विद्यार्थी, शिक्षक, संसाधन व्यक्ति और क्लस्टर रिसोर्सेज सेंटर के समन्वयक शामिल रहे हैं। उन्होंने विद्यालयों, सामुदायिक भवनों, वायम पुस्तकालय और आवश्यक पढ़ने पर शिक्षार्थियों के घरों तक जाकर भी सीखने सिखाने की गति

0: विद्या संचालित की।
1: कम्युनिटी हॉल्स, ओएमए लाइब्रेरीज एंड वेयर नेसेसरी इवन इन लर्नर्स होम्स एज वेल टू देयर ओन सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट।
2: मिजोरम के पहाड़ों पर जब सुबह सुबह धुंध छटती है तो किसी घर के बरामदे में बैठा बुजुर्ग या स्कूल की ओर बढ़ती कोई छोटी बच्ची, दोनों के हाथों में एक चीज समान मिलती है, एक खुली हुई किताब। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
3: और मैं हूँ प्रांजल।
4: अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति साक्षरता का मिजो शिखर, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। विश्व के या देश के अलग अलग हिस्सों को हम समझना चाहें, उन्हें जानना चाहें, तो करनी पड़ती है यात्राएं। और इसी महत्व को रेखांकित करने के लिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के प्रति दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। और पर्यटन की यही मानवीय भूमिका हमें एक दूसरे महत्वपूर्ण दिवस की ओर ले जाती है, विश्व शांति दिवस। हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 में इस दिवस की घोषणा की थी और 2001 में इसे अहिंसा और युद्ध विराम के दिवस के रूप में निर्धारित किया। 2026 में विश्व शांति दिवस की थीम है इन्वेस्ट इन पीस फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरीडे, यानी शांति में निवेश हर व्यक्ति के लिए हर जगह हर दिन। और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण का जिन्होंने अपने विचार, कर्म, कला और जीवन से भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और श्री नारायण गुरु, स्वाधीनता और राष्ट्र चेतना के पुरोधा दादा भाई नौरोजी और अमर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर एनी बेसेंट, महान दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और संगीत की दुनिया की दो महान स्वर साधिकाएं एम एस सुब्बलक्ष्मी और लता मंगेशकर, जिनके सुरों ने भारतीय संगीत को देश और दुनिया तक का विस्तार दिया। इन सभी महान विभूतियों के कृतित्व और व्यक्तित्व को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध गायक आनंद वैद्य का शास्त्रीय गायन। अजमेर राजस्थान के निवासी आनंद वैद्य जी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अजमेर की श्रीमती श्यामल नवरे जी और सांगली के पंडित ए.आर. पटवर्धन जी से प्राप्त की। तत्पश्चात किराना घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित अजय पोहनकर जी के मार्गदर्शन में आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय ख्याल गायकी की शिक्षा ग्रहण की। पिछले 30 से अधिक वर्षों से देश के प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे आनंद वैद्य सुरमणि और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के युवा शास्त्रीय गायक पुरस्कार से सम्मानित हैं। आप आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। आनंद वैद्य जी अपने कार्यक्रम की शुरुआत राग गोरख कल्याण से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल के बोल हैं धन धन भाग जो एक ताल में निबद्ध है। मध्यलय ख्याल के बोल हैं जा जा रे जा पथिकवा जो तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अकबर हुसैन और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं राजेंद्र बनर्जी।

अभी आपने सुना राग गोरख कल्याण। आनंद वैद्य अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग जोग। विलंबित ख्याल के बोल हैं पिहरवा को बिरमायो, जो एक ताल में निबद्ध है। मध्यलय ख्याल के बोल हैं साजन मोरे घर आए, जो तीन ताल में निबद्ध है।

अभी आपने सुना आनंद वैद्य का गाया राग जोग। इसके साथ ही आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलुओं और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर

ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया जो सतत विकास, भूख और गरीबी उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक

0: संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया जो सतत विकास, भूख और गरीबी उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन में बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल देर रात एलिना रिबाकिना और आर्याना सबालेंका के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वरेव के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Amrit Bhushan. The BRICS nations adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi today. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. It highlighted the need to tackle hunger and poverty and strengthen the global response to climate change. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: The 18th BRICS summit kicked off this afternoon with Prime Minister Narendra Modi welcoming leaders of member countries at Bharat Mandapam. In his opening remarks, Prime Minister Modi proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the grouping's institutional momentum is maintained despite the changing chairship every year. He emphasized that the gap between decisions and their outcomes must be bridged through partnership and collective action.
2: ग्लोबल साउथ आज वैश्विक संकटों की फ्रंट रो में है, लेकिन डिसीजन मेकिंग की बैक रो में है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 proposals तैयार करें।
1: The Prime Minister said BRICS countries will have to work on a new and ambitious agenda for the next 20 years. The Prime Minister also proposed to establish a seafarers emergency support network to connect the maritime authorities and diplomatic missions of relevant countries to facilitate assistance during difficult times. After the conclusion of the session on the first day, Prime Minister